का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सुन। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्ती प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का जरूर और जरूर प्रोग्राम को सुनते ही रहना। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। दुनिया की हर एक कोने कोने में भी सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त हम आपसे लेते हुए हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है श्रेया घोषाल की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सर ये श्रेया घोषाल की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हम देख रहे हैं बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। पंडित गायनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

इंद्र शर्मा जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले फिल्म लगान का एक सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

सुंदर भजन लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में पेश की गई फिल्म लगान का ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा अनूप जलोटा जी की आवाज में।

जी की आवाज में ये सुंदर भजन बसवरगाम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। सोमवार का दिन है और प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा एक अति सुंदर भजन फिर से प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अब की बार महेंद्र कपूर जी की ओर। महेंद्र कपूर की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

कपूर की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। महेंद्र कपूर के बाद मीका सुक्खू जी की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर हजर बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

यात्रा प्रोग्राम में अभी आपने सुना। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश की गए। आज सोमवार की सुबह के प्रोग्राम में आश्रो मीठे आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से आप सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है।

चाहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की ओर हम

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंडे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव भी थे। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम होगा अभी बार अभी जीत और

अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में श्रिया और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की सेवा में एक बार फिर से है मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सुम। आज सोमवार का दिन 8 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मानदा 8 जून का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। प्रोग्राम हमारे खुद सुनने वालों ऐप द्वारा भी खबर किया है। रेडियो SBS का ऐप के जरिए कि काम पर जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में इंटरनेट के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए रेडियो SBS.NL के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और हॉलैंड देश के बीच में नीदरलैंड और प्रोविंस साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को स्वागत किया जा रहा है इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। आपको हम ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर। लता जी और मनहर की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है। फिल्म अभिमान, उसी फिल्म का ये गाना सोमवार।

अभिमान फिल्म का गीत पेश की गई मनहर एन लता जी की आवाज में। आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 9:00 प्रोग्राम में 14 मिनट व्यतीत हो चुका है। 13 मिनट ओवर 9 सोमवार का दिन, सभी को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों है जो हर सुबह ये प्रोग्राम को इंतजार कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। एक ही सितारा रेडियो SBS की जरिए, संगीत भरी स्टेशन की जरिए। ओलंदीज का सबसे खूबसूरत शहर यूट्रेक्ट शहर से ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी 40 साल से ज्यादा। मेर दान फिर तैयार आहिस्ता आहिस्ता एनन फिर तैयार हो रहा है कि हमने ये प्रोग्राम ये रेडियो स्टेशन शुरू किया यूट्रेक्ट शहर के अंदर में। और अभी से सारे मेर दान फिर तैयार आहिस्ता आहिस्ता एनन फिर तैयार हो रहा है कि हमने ये प्रोग्राम ये रेडियो स्टेशन शुरू किया यूट्रेक्ट शहर के अंदर में। और अभी तक ये प्रोग्राम

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और आशा जी की आवाज में खास गाना भी आपने सुना, फिल्म जंगली। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, सुनने वालों बहुत सी सुनने वालों बस तार कर रहे हैं। थैंक यू वेल कि आप सभी जोर तोड़ से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और स्टूडियो की ओर भी तार कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और रोटरडम शहर से शीला ने तार किया है। कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मजाक भी हुए हैं और

एक खास प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना, 1962 का फिल्म है, 1962 का फिल्म, दलित शमी कपूर फिल्म में काम किया है। फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना। गाना जो आप सुनेंगे, जो खास तौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली शीला ने मांग किया है, मुझे कितना प्यार है तुमसे, तो लीजिए गाना पेश किया जा रहा है

गाना जो पेश की गई मुझे कितना प्यार है तुमसे, मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना। उसी फिल्म का ये गाना बस पेश की गई, रोटरडम की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। शीला आसरो मीठे अपनी मांगी हुई गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो वेस्ट में इसकी सरिये जो पेश की गई है, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-226-6611 है, यानी कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर तार का नंबर पर हमेशा आप ऐप कर सकते हैं। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। और आपको खबर किया जा रहा है कि रेडियो SBS का ऐप जो है हमेशा आप ऐप भी कर सकते हैं रेडियो SBS इंटरनल वेबसाइट की जरिए। उसी वेबसाइट पर अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर आप ऐप कर सकते हैं। 4:30 स्टूडियो टाइम, यानी कि 4 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 9 बजे में। चले प्रोग्राम में गाना जो पेश होगा लता जी की आवाज में और मांग करने वाली है देहात शहर की रहने वाली कमला। कमला ये खास गाना आज की सुबह की प्रोग्राम में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में मांग किया है।

0: लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। देहरादून शहर की रहने वाली कमला, कमला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सुनने वालों। अगर आप इस पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में कोई भी गाना सुनना चाहेंगे तो जरूर आप तार कीजिए, टेलीफोन नंबर है 0362 66 66 11। आज की प्रोग्राम में आज सोमवार की खास पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में आपको मौका दिया जा रहा है कोई भी गाना मांग करने के लिए। जहां पर भी आप प्रोग्राम सुनते हैं हर एक को पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप गाना मांग कर सकते हैं। जिस तरह से हमेशा हमने आपसे कहा है कि लेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लेट द्वारा काम नहीं करते हैं, यहां पर कोई भी लेट वेट नहीं है और लेट होने की जरूरत भी नहीं है। हर एक को पूरा मौका दिया जा रहा है गाना मांग करने के लिए बिल्कुल फ्री में, और उसके साथ फरमाइश जो है आप तो जानते हैं रेडियो SBS के जरिए सालों से फरमाइश का दाम जो है 5 यूरो पर फरमाइश रखा गया है, और फरमाइश के बाद ग्रेटस में आपको डाउनलोड लिंक भेजा जाता है ताकि आप अपना पूरा के पूरा फरमाइश जो है घर पर डाउनलोड कर सके। और सभी फरमाइश जो है अच्छी क्वालिटी साउंड में सभी गाने पेश किया जा रहा है, कोई भी गाना YouTube द्वारा नहीं पेश होते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड से सभी गाना आपकी फरमाइश में बस पेश किया जा रहा है अच्छी क्वालिटी साउंड में, और वो भी सिर्फ 5 यूरो पर फरमाइश। सालों से ये दाम आप सभी के लिए रखा गया है इस महंगाई की जमाना में भी। तो अगर आपको फरमाइश देना है, विवाह की फरमाइश हुआ, शादी, सालगिरह, जन्मदिन, बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है, तो सस्ती दामों में आपकी तमाम फरमाइश बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।
1: संगीत भरी स्टेशन ये है रेडियो SBS।
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt amper meer iets voor. Er staat alleen nog file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en kleine 10 minuten.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.
0: पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हमारा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज सोमवार का दिन तकरीबन 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा। सोमवार का दिन 8 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में एक गाना पेश होगा, और मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत ठिंगरी। दुष्यंत जो हमेशा इस प्रोग्राम को भी इंतजार कर रहे हैं मॉरिशियस में, और आज की प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में। सीआईडी फिल्म का गाना पेश होगा।

आशा भोसले मोहम्मद रफी और शमशेर बेगम की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए। सीआईडी फिल्म का गीत अभी आपने सुना और मॉरिशियस का रहने वाला खासतौर पर दूषण जेगरे ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। दूषण के तरफ से सभी सुनने वालों के लिए ये गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश की गई। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया मॉरिशियस में दूषण हमेशा पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम भी इंतजार कर रहे हैं, बस सुनते हैं। मॉरिशियस में शुक्रिया धन्यवाद और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और इस गाना पर भी इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश भी अपना रिएक्शंस दिया ऐप द्वारा। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है पूरा परिवार को और रेडियो SBS का प्रोग्राम इंडिया भारत देश में बस सुनते ही रहना। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है एडो फिल्म आशा। आशा फिल्म का नाम लता जी की आवाज में और हमारा प्रोग्राम भी खौदा में रीमा सुनते हैं और रीमा आज की प्रोग्राम में भी तार किया और एक गाना सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज में फिल्म आशा। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए लता जी की आवाज में आज फिल्म आशा, फिल्म आशा का गीत पेश की गई 1980 का फिल्म है और उसी फिल्म का एक बड़ी ही खूबसूरत गाना हावड़ा की रहने वाली रीमा, रीमा ने मांग किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। वैसे हावड़ा शहर के अंदर में भी डे अबे प्लस रेडियो द्वारा हमारा प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी मौतगार में, आपके घरों में। आठ मिनट बाकी है सुबह 10 बजने में। चले प्रोग्राम में अबकी बार लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अबकी बार हम आपको ले चलते हैं 8000 किलोमीटर दूर यानी कि सूरीनाम देश से। रेडियो SBS का ऐप के जरिए तार किया है हेलन और हेलन एक काफी पुरानी फिल्म का गीत आज के प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में। चले मिलकर सुनते हैं।

दादा जो प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में और सूरीनाम देश से हेलन हेलन ने तार किया ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। हेलन आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और ऐसा है सुनने वालों की सूरीनाम देश में भी बहुत से सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम इंटरनेट की सहारे बस सुनते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है और प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना जो प्रोग्राम में अगली बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी खास तौर पर हेमंत कुमार की आवाज में और फिल्म ताज का गीत पेश होगा। 1955 का फिल्म स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में गाना आप सुनेंगे और उत्तराखंड शहर से किशोर आज की प्रोग्राम में भी तार किया और गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं गोरी बुलाए तेरा सांवरिया।

दस बजकर प्रोग्राम में चार मिनट वेटेड हो चुका है। सुनवालों आपको मालूम होंगे, लेकिन आपको हम फिर से खबर कर रहे हैं। हर एक घंटे पर प्रोग्राम में खबरें, रिक्लाम, कमर्शियल पेश किया जा रहा है और खबरें के साथ और भी खबरें होते हैं, यानी कि न्यूज़ भी होता है और न्यूज़ के साथ आपको भी खबर किया जा रहा है कि कहां कहां पर हॉलैंड देश में ट्रैफिक होता है। ये सब के सब खबरें रेडियो SBS के जरिए आप सुन सकते हैं। अब की बार गाना जो पेश होगा फिल्म शोले, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली है स्लाउस्किल से, शहर स्लाउस्किल से शरीन। शरीन ने मांग किया है अपने प्यारा प्यारा पति ईशाक रैन के लिए। ईशाक रैन के लिए खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम है शोले, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। स्लाउस्किल से खास तौर पर शरीन ने मांग किया है ईशाक रैन के लिए ये खास गाना आज के प्रोग्राम में।

ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, किशोर कुमार एंड मन्ना डे की आवाज में फिल्म शोले, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। स्लो स्किल से खासतौर पर शरीन गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में, ईशाक रैन के लिए, ईशाक रैन के लिए गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। शरीन आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज के प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को मौका दिया जा रहा है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक गाना मांग करने के लिए। एक गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है उत्तराखंड शहर से विजय एक खास गाना मांग किया है मुकेश और साथियों के आवाज में, फिल्म का नाम 10 नंबरी, उसी फिल्म का गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय का मांगी हुई गाना।

दस नंबरी फिल्म का गाना पेश की गई। आईटी मुकेश की आवाज में गाना भी आपने सुना। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार लता जी की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है फिल्म लव इन टोक्यो, और ये गाना स्पेशल आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली है। उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना, सपना ने मांग किया है सोमवान के लिए बड़ी प्यार के साथ ये गाना मुझे तुम मिल गए हमदम। लव इन टोक्यो फिल्म का नाम।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई लता जी की आवाज में एक स्पेशल गाना जो उत्तराखंड शहर की रहने वाली सपना ने बांग किया अपने सोमवन के लिए बड़े प्यार के साथ ये गाना पेश की गई फिल्म लव इन टोक्यो उसी ये फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना फिर से प्रोग्राम में लता जी की आवाज में पेश किया जाएगी। आज के प्रोग्राम में काफी सुनने वालों लता की आवाज में गाना को मांग किया है। तो खास गाना आज की प्रोग्राम में देहरादून शहर की रहने वाली रेशमा रेशमा भी आज की प्रोग्राम में हिस्सा लिया है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में और मांग किया है ये गाना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खासतौर पर गाना आज के प्रोग्राम में मांग करने वाली थी देनहाग शहर के रहने वाली रेशमा। रेशमा भी हमेशा पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में बस मांग किया जो प्रोग्राम में पेश की गई है।

फिल्म त्रिशूल उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में यशुदास एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। लिम्बर्ग से खास तौर पर इरेन इरेन ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। इरेना आपके दार के लिए लाख लाख शुक्रिया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस देते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 0332 66 66 11 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी आप कर सकते हैं। दरहाक शहर का रहने वाला विनोद विनोद भी इस वक्त प्रोग्राम जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर हमेशा सुबह की वक्त पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में ये गाना रवि साहब की आवाज में बस मांग किया है।

शहर का रहने वाला विनोद, विनोद ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया मोहम्मद रफी की आवाज में, क्या हुआ याद नहीं। विनोद आपके तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जहां पर भी इस वक्त आप सुनते हैं, जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा बप्पी लहरी एंड लता जी की आवाज में। हम आपको ले चलेंगे अलमेर शहर की ओर और अलमेर शहर में कैलाश हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम। और एक गाना बप्पी लहरी एंड लता जी की आवाज में मांग किया है, सुरक्षा फिल्म का नाम।

लता जी की आवाज में फिल्म सुरक्षा, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अलमीर शहर से कैलाश, कैलाश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। 12 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे में, तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। हमारा प्रोग्राम टेम्स ड्राइव 237 शहर यूट्रेक्ट से, हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुन वालों, अगर आपको फरमाइश देना है, फरमाइश जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। सालों से सिर्फ एक दाम रखा गया है, 5 यूरो पर फरमाइश। इस महंगाई की जमाना में भी 5 यूरो पर फरमाइश दाम रखा गया है और फरमाइश के बाद खरात में डाउनलोड लिंक भी आपको भेजा जा रहा है आपकी मेल में, ताकि आप घर पर अपना पूरा के पूरा फरमाइश जो है आप डाउनलोड कर सकें। आपकी फरमाइश में सभी गाने जो है ओरिजिनल गाने पेश किया जाएगी, अच्छी आवाज में, अच्छी साउंड में। कोई भी गाना YouTube द्वारा नहीं चलाया जा रहा है आपकी फरमाइश में। विवाह की फरमाइश हुआ, शादी की फरमाइश, सालगिरह, जन्मदिन, बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है, आपकी तमाम फरमाइश जो है सस्ती दामों में सिर्फ रेडियो SBS की जरिए 5 यूरो पर फरमाइश। आप तो जानते हैं सालों से एक दाम रखा गया है आपकी फरमाइश के लिए, इस महंगाई की जमाना में भी 5 यूरो पर फरमाइश। सिर्फ रेडियो SBS ये कर सकता है। अलीन वैकुनदत्त, रेडियो SBS। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन दिनों प्रोग्राम जो है दूर दूर शहर तक, हॉलैंडीज के बीच में मेडन नीदरलैंड में और दूर दूर शहरों तक, प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी हमारा ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए सुनाई देता है। न सिर्फ फरमाइश लेकिन आपकी तमाम खबरें, रिक्लाम हुआ सस्ती दामों में,

हमारा प्रोग्राम जो है पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम, हमेशा घर पर गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आंद्रे भी सुनते हैं आम्स्टरडम शहर के अंदर में। और आंद्रे सालों से रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में रामू तो दीवाना है, उसी फिल्म का एक गाना मांग किया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। और एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

0: तू सबसे हसीन है दिलरुबा, गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम रामू तू दीवाना है, और ये खास गाना आमस्टरडम शहर का रहने वाला आंद्रे आज की प्रोग्राम में तार किया, और ये गाना आज की प्रोग्राम में मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सभी सुनने वालों जो तार किया है, गाना मांग किया है, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आज सोमवार की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को पूरा मौका दिया गया है अपना अपना गाना मांग करने के लिए। आने वाले प्रोग्राम में जबकि आप सभी को हम मौका देंगे गाना मांग करने के लिए, तो जरूर इसी तरह से प्रोग्राम में फिर से हिस्सा लेते ही रहना। घड़ी की ओर देखा जाए 3 मिनट बाकी है सुबह 11 बजने में। हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, खबरें के बाद तुरंत हम आपसे मिलते हैं और भी खूबसूरत नगमे लेकर के, तो प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek, beleef de cultuur.

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम की ओर।

गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की सरिये जो पेश की गई द मूवी गेम।

शाम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम गेम। फिल्म गेम के बाद हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम गैंगस्टर।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.nl वेबसाइट की जरिए। चले प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अगली बार कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

दिल को देखो, हम प्यार के हैं राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो

0: प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी, फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: किससे प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

भी सुनने वालों की सेवा भी है। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। समीर कुमार एन अलका याग्निक प्रोग्राम में

0: रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना फिल्म का नाम कसम से। रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश
1: किया है।
0: चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में जानव उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड KK प्रोग्राम में।

0: रेडियो SBS के जरिए अरीना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

0: दुनिया के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला
1: द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा। फिल्म का नाम इज्जत, धर्मेंद्र का

इस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले आज की प्रोग्राम में गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, लता मंगेशकर की आवाज में।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। चलिए प्रोग्राम में शमी कपूर का एक एक्टिंग किया हुआ गाना की ओर, एड फिल्म दिल देके देखो, मोहम्मद रफी प्रोग्राम में है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दिल देखे देखो, उषा खन्ना का संगीत पर यह गाना पेश किया जा रहा है।

राज कपूर का एक्टिंग किया हुआ गाना मेरे प्यारे, एडो फिल्म दीवाना, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत और शंकर जय किशन का मधुर संगीत पर ये गाना पेश की गई है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार फिल्म तेरे मेरे सपने की ओर, द मैन विद एवरी क्वीन वॉइस, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

1971, K-film. Tere Mere Sapne. किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। देवानंद और खास तौर पर मुमताज का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है और खास तौर पर एस डे बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन का संगीत पर ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। एक बार फिर से किशोर एंड लता, अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म दो चोर।

पुरानी फिल्म दो चोर, उसी फिल्म का गीत पेश की गए किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में। एक्टिंग सॉन्ग बाय धर्मेंद्र एंड तनुजा, म्यूजिक बाय एडे बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन का संगीत पर ये गाना पेश की गए। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना फिल्म दो चोर, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, वादा कल्ले साजना, द मूवी हार्ट की सफाई। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में।

uit de film Haki Safai. 1974 film hem. Mohammed Rafi Lata Jiki Avans Meb Yabni Sunan. Acting song by Vinod Khanna. The late Vinod Khanna Aude Simi. Ye khas gana ko acting kiya hai. Kalyan ji Anand ji ka sangeet par abhi aapne suna. Aur khas to par Gulshan Bawra ka likha hua geet bas program mein pesh ki gaye. To chale ab ki baar Amitabh Bachchan aur Rekha ka acting kiya hua gana ki aur. मिस्टर नटवरलाल फिल्म का नाम है. किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में. परदेसिया तूने मेरा

रजीस रोशन का संगीत पर और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना फिल्म मिस्टर नटवालाल, उसी फिल्म का गाना पेश की गई किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में। और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया अमिताभ बच्चन और खासतौर पर रेखा का एक्टिंग किया हुआ गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो चले अगली बार फिल्म नया दौर की ओर, मोहम्मद रफी एनाशिया।

रुफिया उड़ाशा जी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का गाना 1957 1950 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और लता मंगेशकर अब की बार प्रोग्राम में होगा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम ओपरा हाउस 1961 का फिल्म है। देखो मौसम क्या बहार है गाना का बोल।

जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था ओपरा हाउस। 1961 हो तो शस्त्र का खास फिल्म का गीत पेश की गई। चित्र गुप्ता का संगीत पर अभी आपने सुना ये खास गाना, और गाना को एक्टिंग करने वाले थे अजीत और सारोया देवी। इस गाना को एक्टिंग किया है, और इसी तरह से आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म ओपरा हाउस का गीत पेश की गई। एक और काफी पुरानी फिल्म का गीत, फिल्म का नाम पैगाम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले प्रोग्राम में। जवानी में अकेलेपन की गाना।

श्री रामचंद्र का संगीत पर दिलीप कुमार और विजंती माला का एक्टिंग किया हुआ गाना फिल्म पैगाम का गीत पेश किए गए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में 1959 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना। तो चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है पल पल दिल के पास। आई द फिल्म ब्लैक।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम ब्लैकमेल। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना, जो एक्टिंग किया गया है, एक्टिंग सॉन्ग बाय धर्मेंद्र। इसी तरह से ये काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस खसम दूर सोनू निगम एंड अल कयाच ने कैन क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दा खसम दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आई द फिल्म आशिक एन आई द फिल्म हम हो गए आपके इस फॉलोइंग लीजिए इन इट प्रोग्राम गी तुम के लहर फिया रेडियो SBS गजोंग दूर कुमार सानू एंड अलका याचनिक कम द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम हो गए आपके।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दोर जगजीत सिंह एंड कुमार द फिल्म प्रेम गीत, एन गजोंग दोर किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार।

मुझे रंग दे, इसके साथ राशा भोसले एंक्वा मैं फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम थोसा दो जगजीत सिंह। कल 14वीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सुसंग दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसंग दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आर द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

कैसा है चिनाब का, इस गजंग दौर किशोर कुमार. एंड आउट द फिल्म चलती कराम गाड़ी कम गजंग दौर किशोर कुमार वेयर एक लड़की भीगी भागी सी.

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तुम के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आजमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.